उन्हें नमन करता हूं। हर हाल में यथोचित, हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है।